0: मैंने रिसेंटली एक चीज रियलाइज की, इस दुनिया में दो सबसे फेमस फ्रेजेस हैं, नंबर वन आई लव यू, नंबर टू मेड इन चाइना। दोनों की गारंटी नहीं, दोनों की वारंटी नहीं, लेकिन वी स्टिल गो अहेड एंड इंडल्ज इन बोथ दीज थिंग्स, प्यार और चाइनीज माल। अगर आपने भी जिंदगी में किसी से प्यार कर लिया नोइंग फुली वेल कि ये रिलेशनशिप कहीं जाने वाला नहीं है, देन आई वॉन्ट टू नो योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी, एंड टू डू दैट आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochiE, सो गो अहेड एंड डू व्हाट यू आर सो गुड एट डूइंग, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई, बजा।

0: Mirchi, it's hot.
1: Oh God, one more.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची पर अब बारी है फॉर असली पॉप काउंटडाउन ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑफकोर्स एज अ स्पेशल स्पॉटलाइट। ऑल दिस एंड मोर, तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी, दीप क्लेयर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स। गाने का नाम है साडी सुन। तीन हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, साडी सुन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद अनीश सरकार का उड़ी उड़ी, पांच हफ्तों से इस काउंटडाउन पर अपना धावा बना के बैठा है। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, उड़ी उड़ी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।
2: How

0: समय ढक जाए।
1: कहाँ है वो लोग, नजर नहीं आ रहे जो बोलते रहते हैं कि सारे इंडिपेंडेंट गाने एक ही जैसे साउंड करते हैं। ये वाला सुनिए, अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी। व्हाट अ बैंगर ऑफ अ सॉन्ग, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाए, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है, पूरे दिन इंटरनेट पे बैठे रहते हैं तो कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इस काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स बाय एन आर्टिस्ट जिनकी आवाज सुनते ही ना, मतलब मेरे को एकदम वो मजे आ जाते हैं। यू नो देयर आर दीज वॉइसेस व्हिच मेक यू फील रियली हैप्पी। वो बोलते हैं खनक है उनकी आवाज में। आई एम टॉकिंग अबाउट एश किंग, जिन्हें मोस्ट पॉपुलरली हम जानते हैं एज वॉइस बिहाइंड सॉन्ग्स लाइक
3: आई लव यू।
1: कुछ बात उनकी आवाज में सुनते ही ऐसा मूड अच्छा हो जाता है। एंड इस आवाज को ढूंढ के हमारे पास लाए थे AR रहमान। साल 2009 में दिल्ली 6 में उन्होंने अपना पहला हिंदी गाना गाया था। एंड द फनीएस्ट पार्ट अबाउट दैट कोलैबोरेशन इज दैट उस समय एश किंग की हिंदी डिक्शन इतनी अच्छी नहीं थी, वो बस UK से आए थे, बट AR रहमान सर ने उन्हें सुना एंड ही वॉज लाइक आप मेरे लिए ये गाना गा रहे हैं। एंड तब एश किंग ने AR रहमान के लिए ये वाला गाना गाया। गाने का नाम है दिल गिरा दफतन। दिल्ली 6 की बहुत बड़ी एल्बम मसक अली अर्जियां के पीछे अगर इस गाने को भूल गए थे तो वापस इसको याद कर लीजिए। तब से लेके अब तक एश किंग हैज बीन द वॉइस बिहाइंड सम ऑफ द ग्रेट सॉन्ग्स लाइक मेहरबान, TMO। 2019 में उनका एक इंडी पॉप गाना आया था कॉल्ड हाई ओए।

There's something about Ash King's voice which just naturally draws you towards this song. आप connect कर जाते हो. वो कभी गाने पे हावी नहीं होते हैं, बल्कि he lets you experience that song. तो अपने radio sets की volume बढ़ा दीजिए. नई नवेली entry debut कर रही है सीधा Ash King की आवाज में. एक गाने का नाम है किनिया सोनी. ये गाना debut कर रहा है this week on Gaana number 8. You are listening to Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है कनका. Enjoy. Number 8.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट

0: आदित्य रिखारी कुटले खां की आवाज, रावटोर का म्यूजिक, कोक स्टूडियो भारत का गाना, दिस वाज ए अजनबी। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना अनूप जैन की आवाज में, गाने का नाम है अर्ज किया है, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। 24 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार अर्ज किया है वाज ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, स्वागत है आपका। This is the Gaana Indie Top 10। बंदी का नाम है RJ Kanika। This is the show which is all about the hottest pop music of the week, all about the hottest pop stars of the music scene। Instagram पर जाओ, मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना हो, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 6 पर हमने सुना ए अजनबी इन द वॉइस ऑफ आदित्य रिखारी एंड कुटले खां, एक कोक स्टूडियो भारत का गाना। किसी भी आर्टिस्ट के लिए गाना एक बहुत बड़ी बात होती है। हर आर्टिस्ट का सपना होता है एक कोक स्टूडियो भारत का गाना करना, एंड आदित्य रिखारी पिछले कुछ ही सालों में वो चोजन पॉप स्टार बन चुके हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट ना, ये स्टार बनने के मायने बदल गए हैं। स्पेशली पॉप म्यूजिक में रिवाइंड करूं, 20 साल पहले आप चूज किए जाते हो, आपकी एल्बम आती है, आपको ब्रेक मिलता है, तब आप फेमस होते हैं। लेकिन अब पहले ऑडियंस आपको देखती है, डिसाइड करती है, आपके साथ एंगेज करती है, तब आपको आपका ब्रेक मिलता है। एंड आदित्य रिखारी उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। दिल्ली के एक यंग सिंगर सॉन्ग राइटर लॉकडाउन के दौरान अपने कमरे से अपने गाने अपलोड कर रहे थे, पर उनके गाने ऐसे फॉरवर्ड हो रहे थे, वायरल हो रहे थे हर जगह, बिकॉज वो हमको हमारी ही कहानी सुना रहे थे। एंड देन उनका गाना आया कॉल्ड फासले। इस गाने ने उनको म्यूजिक मैप में पिन कर दिया था, एंड देन केम समझो ना। इस गाने के बारे में तो मैं जितनी बात करूं कम है। इट गॉट अडैप्टेड इन अ कार्तिक आर्यन मूवी, जो एक दिल्ली से आए यंग सिंगर सॉन्ग राइटर के लिए बहुत बड़ी बात है। पर मेरे हिसाब से आदित्य रिखारी का सबसे बड़ा गाना इस साहिबा। उनके जितने कॉन्सर्ट होते हैं, वो जब भी इंटरव्यू करते हैं, आप कहीं चले जाए, एक गाना जो हर फैन उनसे डिमांड करता है कि प्लीज ये वाला गाना गा दीजिए, वो गाने का नाम है साहिबा। तो अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। अ स्पेशल स्पॉटलाइट ऑन आदित्य रिखारी बेस्ट सॉन्ग, दिस इज साहिबा, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

आदित्य रेगारी की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज, दैट वॉज साहिबा. दिस सॉन्ग इज अ रिमाइंडर दैट एक अच्छे गाने को किसी बड़ी फिल्म या बड़े हीरो की जरूरत ही नहीं होती है. एंड आई एम प्रिटी श्योर आदित्य रेगारी ऐसे और एग्जाम्पल्स हमको देते जाएंगे. काउंटडाउन में आगे बढ़ते हैं. अगले वाला गाना इज बाय संजू राठौड़, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है बैंगल्स. 5 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. बैंगल्स इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. No.

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट। गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4।

0: दिलजीत दोसांझ, सिया, डेविड गेटा का गाना, गाने का नाम है रांझा, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। रांझा वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। @RJKanika on Instagram पर आए, मेरे साथ कनेक्ट करें, कोई गाना सजेस्ट करना है, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा फिर सबके दिल को।
0: The song we're going to feature this week is

गाने का नाम है बूंदे बाय द सिल्क रूट। ये गाना 1998 में आया था, सिल्क रूट द बैंड की डेब्यू एल्बम बूंदे का ही पार्ट था। जब ये एल्बम रिलीज हुई थी, सिल्क रूट ने पॉप म्यूजिक स्पेस में अकूस्टिक गिटार, फोक इन्फ्लुएंसेस एंड सॉफ्ट मेलोडी, वेरी पोएट्री फर्स्ट गानों को इंट्रोड्यूस किया था। बैंड के लीड वोकलिस्ट मोहित चौहान, बैंड मेंबर्स अतुल मित्तल, केम त्रिवेदी एंड केनी पुरी, उनकी म्यूजिक आइडेंटिटी किसी फिल्म से कम नहीं थी। उनकी म्यूजिक वीडियोस, द वे देयर म्यूजिक ट्रैवल्ड इज समथिंग जो आज भी हम जानते हैं। इसी एल्बम का पार्ट था डूबा डूबा, जो हर घर तक पहुंच गया। पर उस एल्बम में और बहुत सारे ऐसे जेम्स हैं जिन्हें आपको कभी फुर्सत लेके सुनना चाहिए। एंड अगर आप सच में उनकी म्यूजिकलिटी को जेन्युइनली एंजॉय करना चाहते हो, तो ये वाला गाना बूंदे उसे परफेक्टली डिफाइन करता है। गाने के लिरिक्स प्रसून जोशी ने लिखे थे और उसमें बारिश ना सिर्फ ऐसे मौसम का पार्ट नहीं है, बल्कि बूंदों को यादों से कंपेयर किया गया है, किसी की खुशबू से कंपेयर किया गया है, एक ऐसी प्रेजेंस से कंपेयर किया गया है जो हमारे सामने नहीं है बट आप हर जगह महसूस करते हैं। आज भी जब मैं ये गाना सुनती हूँ तो प्रोडक्शन में भी आपको 19-20 लग सकता है, बट द इमोशन इज सो फ्रेश एंड शायद इसीलिए ये एक प्रॉपर क्लासिक है। तो अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। सिल्क रूट द बैंड का गाना मोहित चौहान की आवाज में, दिस इज बूंदे, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: मैन ओ मैन, व्हाट इज दिस सॉन्ग? ऐसा लग रहा है कि मैं किसी की मेमोरी में ऐसे फ्लोट कर रही थी. मोहित चौहान की आवाज, सिल्क रूट द बैंड का गाना, दैट वॉज बूंदे ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. पिंच मी अश्काय, बिकॉज आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पिक्स वी हैड सो फार. एट RJ कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ. अश्काय माई साउंड प्रोड्यूसर, और मैं आपकी सारी सजेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं. 90s 2000s का वो इंडी पॉप गाना जो आज भी आपके लिए सुपर स्पेशल है, हमसे आके शेयर करिए. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. इट इज अगेन अ दिलजीत दोसांझ सॉन्ग. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप किया ये गाना. गाने का नाम है डीलर. 16 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. डीलर इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो मिर्ची सुन रहे हैं आप। शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, लेकिन एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर इस हफ्ते हर्ष नुसी का साड़ी सुन। उसके बाद अनीश सरकार का उड़ी उड़ी और गाना नंबर 9। एक नई नवेली एंट्री, एश किंग का गाना किनिया सोनी ने डेब्यू किया है और गाना नंबर 8। दिस सॉन्ग इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर बाय द वीक। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके अर्ज किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
2: कायर जो थे वो शायर बने।
1: उसके बाद आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां का गाना, एक और कोक स्टूडियो भारत का गाना ए अजनबी ऑन गाना नंबर 6। संजू राठौड़ का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 4। बैक टू बैक बाय दिलजीत, उनका गाना डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। जिधर तू पीछे यातनगी ना चौपर जोगी डब दबीना। एंड नाउ फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, बंजारे का गाना बैरन 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2 एंड द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। मिट्टा रौर का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन मिट्टा रौर स्वरा वर्मा की आवाज में, गाने का नाम है शीशा, वंस अगेन ऑन गाना नंबर 1। ये दोनों गाने बैरन ऑन गाना नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 2।

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: Yaadein kabhi purani nahi hoti. सिर्फ उन्हें याद करने की वजह बदल जाती है, इसलिए कुछ गाने, कुछ फिल्में और कुछ आवाजें सालों बाद भी बिल्कुल वैसी ही महसूस होती हैं। हिट होना अलग बात है, याद रह जाना वो बहुत बड़ी बात है। और शायद इसलिए बॉलीवुड में सबसे मुश्किल काम ब्लॉकबस्टर बनाना नहीं, एक लेगेसी बनाना है। आज के काउंटडाउन में भी कुछ नए गाने होंगे, कुछ पुरानी यादें होंगी और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो शायद आप घर ले जाएंगे। हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी फिल्म म्यूजिक / बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन। और शुरुआत कर रहा हूं विद द फर्स्ट सॉन्ग जो है नंबर 20 की पोजीशन पर। मुझे लगा था शायद ये अलविदा कहने वाला है, लेकिन नहीं, ये हमारे लिए थोड़ा और रुक गया है। द ग्रेटेस्ट लव सॉन्ग फ्रॉम लास्ट ईयर, दिस इज सैयारा।
0: Number 20.

0: कॉकटेल 2 एक लंबी लिस्ट का हिस्सा बन गया है. Films that created some excitement at the start, लेकिन उसके बाद, well, they just exist. इनके बारे में हमें पता है, लेकिन इनके साथ वो कनेक्शन नहीं बन पाया है. कभी-कभी किसी फिल्म की सबसे बड़ी पब्लिसिटी उसका ट्रेलर नहीं होती, उसका गायब हो जाना होती है. पिछले हफ्ते एक फिल्म ने पूरे देश को एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया. सतलज रिलीज हुई, लोगों ने देखनी शुरू की और फिर रातों रात फिल्म हटा दी गई. एक वजह भी बताई गई पर वजह कन्विंसिंग नहीं थी. बहस शुरू हो गई लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात घूमती रही, अगर कोई कहानी इतनी खतरनाक है कि उसे देखना ही नहीं चाहिए तो उसे हटा देने के बाद लोग उसे और ज्यादा क्यों ढूंढते हैं. शायद क्योंकि इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी होती है, जिस दरवाजे पर नो एंट्री लिखा हो सबसे पहले वही दरवाजा खोलने का मन करता है. और इंटरनेट के जमाने में एक बार कोई चीज दुनिया के सामने आ गई, उसे मिटाना शायद उसे और ज्यादा फैला देने जैसा होता है. नंबर 18 पर इस हफ्ते है तू ही दिसदा भूत बंगला से, एंड देन एक ऐसी फिल्म जिसने किसी कंट्रोवर्सी से नहीं सिर्फ लोगों की मोहब्बत से अपनी जगह बनाई है. दिलजीत दोसांझ सतलज में भी हैं और इस फिल्म में भी हैं. तो मैं वापस आऊंगा और नंबर 17 दिस इज मस्कारा.
1: नंबर 17.

Wow, the craziest songs from Dhurandhar 2. ये था मैं और तू by Jasmine Sanilas. And I don't know अगर धुरंधर एक सच्ची कहानी है या it's fiction. But Bollywood filmmakers को सच्ची कहानियाँ पसंद बड़ी हैं. Which is why we love our biopics. And एक और biopic देखने के लिए अब जनता उत्सुक है. सौरव गांगुली की biopic दादा. क्योंकि इस हफ्ते उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक आ गया है एंड मैं शायद माइनॉरिटी में हूं लेकिन मुझे क्रिकेट बायोपिक्स का कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड लगता है. क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है ये लड़का? वेल, क्योंकि कुछ जिंदगियां एक फिल्म में नहीं समा पाती. सोचिए सौरव गांगुली लॉर्ड्स में एक डेब्यू सेंचुरी, मैच फिक्सिंग के बाद इंडियन क्रिकेट की कमान संभाली, देन 2002 में वो नैटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल. And then आया उनका सबसे मुश्किल चैप्टर, ग्रेग चैपल एज द कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. उस वक्त सौरव कप्तान थे, फिर टीम से बाहर हो गए और फिर एक कमबैक भी हुआ. एंड देन यू गॉट क्रिकेट के बाद की जिंदगी. सिर्फ यही कहानी सुनाने अगर बैठोगे तो 10 घंटे निकल जाएंगे. एंड सौरव गांगुली द क्रिकेटर तो एक तरफ है, इसके अलावा सौरव गांगुली द पर्सन, द ह्यूमन बीइंग भी तो दिखाओगे. और यही वजह है कि मुझे लगता है कि क्रिकेट बायोपिक्स अक्सर स्कोर कार्ड दिखा देती हैं, क्रिकेटर को नहीं. इसलिए राजकुमार राव और विक्रमादित्य मोटवाने पर पूरा भरोसा होने के बाद भी मैं सौरव गांगुली की बायोपिक को लेकर थोड़ा स्केप्टिकल हूं. क्योंकि कुछ कहानियां फिल्म नहीं, वक्त मांगती है. सिर्फ एक MS धोनी की बायोपिक थी विच वर्क फॉर सम रीजन, बट उसके अलावा 83 अजहर नॉट सो मच. क्या नंबर 15 पर इस हफ्ते डेब्यू कर रहा है एक नया गाना मेरे फेवरेट आर्टिस्ट तलविंदर की आवाज में, पल पल जीना मुहाल. गाना याद है ना? वेल, ये गाना है क्यों फ्रॉम वेलकम टू द जंगल एंड इट्स हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20. नंबर 15.

सिंह के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 5।

शरारत 20 हफ्तों तक जिस गाने ने नंबर वन पर रूल किया आज पहली बार किसी और पोजीशन पर है। और इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि एक गाना नीचे आया है, इसका मतलब ये है कि इस काउंटडाउन को एक नया नंबर वन सॉन्ग मिलने वाला है। वैसे शरारत का मतलब होती है एक छोटी सी प्यारी सी गलती, अ प्लेफुल मिस्टेक। लेकिन बॉलीवुड में कुछ चीजों के साथ शरारत करने की इजाजत नहीं होती, कुछ फिल्मों के साथ, कुछ एल्बम्स के साथ, क्योंकि वो सिर्फ हिट नहीं होती, वो यादें बन जाती हैं। नंबर चार पर इस हफ्ते है चुनरी चुनरी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। गाना तो वापस आ गया लेकिन वो फीलिंग नहीं आई, और वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्लासिक को रिक्रिएट करना आसान है, उसकी रूह को वापस लाना नामुमकिन के बराबर। इसलिए आवारापन 2 को लेकर इतनी एक्साइटमेंट है। आवारापन सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो इमरान हाशमी की वो दुनिया थी जहां गाने खत्म होने के बाद भी हमारे दिलो दिमाग से निकल नहीं पाए। एंड देन वी हर्ड ऑफ आवारापन 2, जिसका नया गाना वे जुनून हमने पहली बार सुना।

Now on first listen, लगा ठीक है. दूसरी बार सुना तो लगा एक सेकेंड जरा रुको. And then तीसरी बार I had goosebumps. ये गाना हिट होने की कोशिश ही नहीं कर रहा, ये आपके अंदर उतरना चाहता है, बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह, जहर की तरह. और तब समझ आया कि लोगों ने वो बात क्यों बोली थी. अखा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ. My special request of the week is the same team that is giving us Ve Junoon in Awarapan 2. Imran Hashmi aur unke saath is gaane ke composer Mithun. Aur isi combo ne ek aur gaane mein jadu bikhera tha. Jab kai baar dil tootne ke bawajood phir mohabbat karne chalta hai. Special request song.

0: ऊंचा लंबा कट फ्रॉम वेलकम टू द जंगल। हाय, बॉलीवुड सीक्वल्स बहुत बनाता है, लेकिन इंसान, एक इंसान के सीक्वल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस हफ्ते रणवीर सिंह टर्न्ड 41 और मुझे एहसास हुआ कि पिछले 16 सालों में मेरी मुलाकात 3 अलग अलग रणवीर सिंह से हुई है।
1: मैं तो बॉलीवुड का सब्सक्राइबर रहा हूँ अपने बचपन से, लेकिन ओवर द इयर्स हमारी इंडस्ट्री में भी एवोल्यूशन आया है। जैसे कि पहला था, आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। थिंग्स आर लॉट मोर कॉर्पोरेट, लॉट मोर स्ट्रीमलाइंड, प्रोफेशनैलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है इंडस्ट्री में। तो मुझे खुशी है कि मैं ऐसे टाइम पर आया हूँ जब अलग टाइप की फिल्में बन रही हैं और इंडस्ट्री इतनी एक्सपैंड हो गई है। मैं आदि सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी पहली फिल्म दी, और मेरे तो बचपन का सपना पूरा हो गया जी, मैं क्या बताऊँ।
0: एक वो रणवीर था जो हमें बैंड बाजा बारात के बाद दिखा, नया, बेचैन, ओवर द टॉप। जैसे हर इंटरव्यू में वो दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहता था कि मैं यहाँ टिकने आया हूँ।
2: क्या बोलूँ यार, इट्स अ वेरी ब्लेस्ड टाइम, अच्छा टाइम चल रहा है, टचवुड कुछ तो अच्छा किया होगा। बट ट्रूथ बी टोल्ड, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। इट्स लाइक लाइफ हाईलाइट आफ्टर लाइफ हाईलाइट। आई एम लाइक, व्हाट्स गोइंग ऑन, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू बट सेलिब्रेट। And people are recognizing that now more than ever before. You know, they did kind of in like 13, 15. There was Lutera and Ramleela in 2013. Yeah. There was Dil Dhadakne Do Bajirao Mastani in 15. Now it's like Khilji, Simba and Karni Boy. It's like, wow. So it's a conscious endeavor to, you know, showcase that versatility. And it's all happening. So I'm really happy about it.
0: Phir mila dusra Ranveer. Ab wo superstar ban chuka tha. Use apne talent ka andaza tha. Use pata tha ki wo kitna achha actor hai. रॉनस की जगह यकीन आ चुका था, लेकिन उसकी एनर्जी अभी उतनी ही बड़ी थी जितना उसका एम्बिशन। लेकिन अब भी वो बेचैन था। और फिर आया तीसरा रणवीर, खामोशी, नो इंटरव्यूज, नो हेडलाइंस, नो एक्सप्लेनेशंस, सिर्फ एक फिल्म और उसके दो हिस्से, जिसने दुनिया से बाकी सब कुछ कह दिया। अजीब बात है ना, करियर की शुरुआत में रणवीर चाहता था कि दुनिया उसे सुने, आज दुनिया उसे सुनना चाहती है, लेकिन मिल रही है तो सिर्फ खामोशी। आई टोल्ड यू, आज वी अबाउट टू गेट अ ब्रांड न्यू नंबर वन सॉन्ग। लेकिन ये गाना ब्रांड न्यू है नहीं, ये वो गाना है जिसे हमेशा नंबर वन होना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी खामोशी है, एक गहरी वाली खामोशी। द नंबर वन सॉन्ग ऑन द मिर्ची Top 20. Number 1.

0: The Crown is now on the best song of the show. शायद इसी में इस गाने की सबसे बड़ी जीत छुपी है। इसने हमें याद दिला दिया कि हर चीज वायरल होने की जरूरत नहीं होती। कुछ फीलिंग्स, कुछ वाइब्स धीरे धीरे दिल में उतरती हैं और फिर वहीं रह जाती हैं। इट्स टाइम टू एंड दिस एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉप 20, बट फिर मिलूंगा। इनफैक्ट मैं भी वापस आऊंगा। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: कुड़ी कहती बेबी पहला जे गुआ ले लो, फिर जिन्ना मर्जी पिया ले लो,

0: Candy.
1: Musical Doctors.
2: Mirchi, it's hot.

Mitchie. It's hot.

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

0: गुड़ किन्ने खालिया
1: स्वीटी,
0: गुड़ वाली चाय किन्ने पीती
1: स्वीटी,
0: बुआ जिदा नाना किन्ने खिचिया
1: हाँ
0: खिच के हमारी किन्ने सीटी।

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

बस तेरा चले तो ले ले पूरा दिन, हो तैयार तू घंटे न गिन, मैं हूँ यही एच सर्विस, टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट, हाथ मेरा थाम, लेट मी मेक यू स्माइल, आई लाइक योर स्वैग, यू लाइक माय स्टाइल।

गुड मॉर्निंग, उठ भी जाओ क्योंकि कॉफी से पहले अगर किसी पे ट्रस्ट करना है तो वो है मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और अगले कुछ घंटों के लिए चाहे तुम्हारे ऑफिस जाने का ट्रैफिक हो या फिर तुम्हारा सबवे का प्लेटफॉर्म हो या किचन में टिफिन पैकिंग का चैंपियनशिप चल रहा हो, कंसिडर मी एज योर फेवरेट बैक सीट बेस्टी। यहाँ पर तुमको मिलने वाला है बॉलीवुड का तड़का, म्यूजिक, मस्ती, हंसी की अनलिमिटेड रिफिल्स, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया एंड थोड़ा सा अरे यार ये तो मेरा फेवरेट गाना है, ऐसे वाले बहुत सारे मोमेंट्स मिलने वाले हैं। साथ साथ में मिर्चीदार बैंगर म्यूजिक भी है, एंड ऑफ कोर्स आई विल गिव यू अराउंड द वर्ल्ड की खबरें, वेदर अपडेट एंड ढेर सारी बकबक। तो अपना चाय, कॉफी, ब्रेकफास्ट सब कुछ तैयार कर लो, मेरे साथ चिपक कर बैठ जाओ। मिर्ची मॉर्निंग्स हैज जस्ट ऑफिशियली बिगन। फटाफट से मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसला और सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और चलो अब शुरू करते हैं हम बिना पासपोर्ट के टाइम ट्रैवलिंग। 1799 में इजिप्ट के राशिद विलेज में मिली रोजेटा स्टोन, जिसने एंशिएंट इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स का पासवर्ड ही क्रैक कर दिया। फिर 1945 में न्यू मेक्सिको में हुआ ट्रिनिटी टेस्ट, दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, एक ऐसा दिन जिसने साइंस और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों की डायरेक्शन बदल दी। 1965 में नासा के मरीनर 4 ने मार्स की पहली क्लोजअप फोटोज भेजी। 1996 में लॉन्च हुआ MSNBC 24-आवर न्यूज चैनल। 2009 में स्पेस शटल एंडेवर उड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कीबो मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए। और फुटबॉल लवर्स, 2018 में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हराकर अपना दूसरा फीफा वर्ल्ड कप जीता। आलेले ब्लू, यानी कि कम ऑन द ब्लू, ये उस साल का शॉर्ट एंड सिंपल इम्पॉसिबल टू फॉरगेट फैंस का चैंट बन गया। और फैंस का कहना था अगली बार पक्का। And that's it for your time traveling journey with me, Priscilla on Mirchi Mornings. अब चलते हैं थोड़े मिर्चीदार bangers सुनते हैं। तब तक तो मुझे follow करो। Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X, and WhatsApp पर number है 9033 Mirchi. That's 9033647244. फिलहाल के लिए stay tuned and stay hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो द मिर्ची मॉर्निंग्स। और चाय गर्म है, ट्रैफिक स्लो है, लेकिन फीवा का टेम्परेचर जो है फुल ऑन हाई है।
1: मिर्ची वॉच इट।
0: स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर अपनी सिर्फ दूसरी फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बना ली है। मिकेल ओयात्सबाल ने 22nd मिनट में पेनल्टी कन्वर्ट की और पेड्रो पोरो ने सेकेंड गोल मार के फ्रांस का 3 फाइनल्स इन अ रो वाला ड्रीम फुल टाइम पर ही पैक कर दिया। स्पेन अब 37 मैचेस से अनबीटन है और ओयात्सबाल टूर्नामेंट में अपने 5 गोल्स के साथ स्पेन के वर्ल्ड कप हिस्ट्री बुक्स में डेविड विला एंड एमिलियो बूत्रागेनियो के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं। और फ्रांस के कैप्टन किलियन एम्बापे, जो टूर्नामेंट में 8 गोल्स के साथ गोल्डन बूट रेस में टॉप पर हैं, इस मैच में स्कोर नहीं कर पाए। एंड दूसरी खबर ये है कि अर्जेंटीना सिर्फ प्लेयर्स नहीं बल्कि 500 किलो से ज्यादा अपना देसी स्टाइल बीफ भी कैंसर सिटी बेस कैंप ले आई है। लोमो एंट्रानिया मतांबरे फुल ऑन बारबेक्यू सीन चल रहे हैं भाई। मोटिवेशन लेवल इज होम का खाना, तो होम का खाना ही होता है। और तीसरी खबर ये है कि सोशल मीडिया पर 9 मिलियन से ज्यादा सिग्नेचर्स वाले एक ऑनलाइन पिटिशन में कुछ फैंस अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप से बाहर करने की डिमांड कर रहे हैं, अलेजिंग रेफरिंग बायस इन फेवर ऑफ लायनल मेसी एंड अर्जेंटीना। ये याद रहे कि एक फैन ड्रिवन ऑनलाइन पिटिशन है, इसका टूर्नामेंट या फीफा के डिसीजन पर कोई ऑफिशियल असर नहीं है। फुटबॉल में इमोशंस थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तक चलते हैं, जस्ट लाइक एवरी अदर स्पोर्ट। अब देखना ये है कि स्पेन फाइनल में इंग्लैंड से टकराएगी या अर्जेंटीना से। और आज है ब्लॉकबस्टर सेमीफाइनल, इसलिए फटाफट से मुझे फॉलो कर दो। मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब टेम्परेचर का हाल चाल सुनने वाले हो, यानी कि वेदर अपडेट। अभी फिलहाल हो रहा है 75 डिग्री, फारेनहाइट सनशाइन फुल अटेंडेंस पर है, हवा चल रही है सनन, इसीलिए फील हो रहा है 74 डिग्री फारेनहाइट के आसपास। यानी कि एसी ने आज थोड़ा सा ओवर टाइम कर दिया है। देखो सुबह 10-11 बजे तक थोड़ा सा पार्टली क्लाउडी स्काईज दिखने वाले हैं, लेकिन 2 बजे के आसपास क्लाउड्स जो है वो थोड़े से और ज्यादा गैदर हो जाएंगे। मोस्टली क्लाउडी कंडीशंस एक्सपेक्टेड है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में रेन का 0 चांस है। हाँ जी, 0 मिलीमीटर्स प्रेसिपिटेशन है, मतलब कि अम्ब्रेला आज भी पेड लीव लेकर घर पर बैठ सकता है। लेकिन ये सुनो कि आफ्टरनून में टेम्परेचर सीधा 96 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच सकता है, और कल से भी ज्यादा गर्म होने वाला है आज का दिन। कल का हाई था 91 डिग्री फारेनहाइट और आज 96 डिग्री फारेनहाइट तक जाने वाला है। मतलब कि वेदर कह रहा है आई एम ऑल्सो ब्रिंगिंग फीफा वाला हीट। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आज एक्सट्रीम हीट वार्निंग है और एयर क्वालिटी अलर्ट दोनों ही इफेक्ट में है। इसका मतलब यह है कि बाहर जाना जरूरी नहीं है तो घर पर बैठो, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है तो अपने साथ वाटर बॉटल कैरी करना बनता है, साथ में सनस्क्रीन लगाना बनता है और साथ में लाइट कलर के कपड़े पहनना बनता है। और अगर पॉसिबल हो तो आफ्टरनून की डायरेक्ट धूप से थोड़ा सा बचकर रहो, स्पेशली बच्चे और सीनियर सिटीजन जिन्हें बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है वो ना जाएं। प्लीज टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। वैसे भी यार गर्मी पड़ते ही इंडियन मम्मीज का एक फेवरेट डायलॉग है, और घूमो बाहर तबीयत खराब हो जाएगी। एंड इफ यू रिलेट टू दैट, फटाफट से मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिंस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS इंस्टाग्राम और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट, क्योंकि आने वाले मिर्ची दे आर बैंगर्स।

अब आने वाली है खबरें फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले अमेरिका में सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट ने हाउस से ग्रीन सिग्नल ले लिया है। अगर ये बिल सेनेट से भी पास हो गया तो हर साल क्लॉक्स को आगे पीछे करने का ड्रामा खत्म हो जाएगा। मतलब कि स्प्रिंग फॉरवर्ड फॉल बैक की मैथ क्लास से परमानेंट छुट्टी हो सकती है। लेकिन होल्ड ऑन, अभी सेनेट की अप्रूवल और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही ये लॉ बनेगा। एंड नंबर टू पर इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन अपनी पहली स्पेस मिशन के लिए सोयूज MS-29 से सक्सेसफुली लिफ्ट ऑफ कर चुके हैं और अगले 8 महीने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रिसर्च करेंगे। AI असिस्टेड मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स भी होने वाले हैं वहां पर। एंड फाइनली स्पोर्ट्स से, इंडिया ने एच बैस्टन में इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया और उनका 11 इयर्स का ODI अनबीटन होम स्ट्रीक वहां पर स्टॉप हो गया है। कैप्टन शुभमन गिल ने क्लासी 80 रन्स बनाए। अक्षर पटेल ने ऑलराउंडर धमाका किया है 4 विकेट और अनबीटन 57 का। और वॉशिंगटन सुंदर के साथ मैच विनिंग पार्टनरशिप करके इंडिया को लगातार 6th ODI विन भी दिला दिया है इंग्लैंड के खिलाफ काफी देसी स्टाइल में। दैट्स द एनर्जी वी नीड इन स्पोर्ट्स। मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड अभी के लिए मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। फीफा वर्ल्ड कप से नॉर्वे का सफर क्वार्टर फाइनल्स में खत्म हुआ, लेकिन हॉलैंड ने मूड को ऑफसाइड नहीं होने दिया है। वर्ल्ड कप के एग्जिट के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड इजाबेल जोहानसन के साथ इटली के ब्यूटिफुल सिसिली में डोल्चे एंड गबाना ऑल्टर मोड फैशन शो अटेंड करते हुए नजर आए हैं। बोथ वर ट्विनिंग इन एलिगेंट व्हाइट आउटफिट्स। हॉलैंड लुक्ड सुपर शार्प इन क्लासिक टेलरिंग एंड इजाबेल ने क्रिस्टल एम्बेल गाउन में फुल रेड कार्पेट वाइब्स दी। मतलब कि फुटबॉल पिच हो या फैशन रनवे हो, स्टाइल का स्कोर तो इनका 10/10 ही रहने वाला है। और वैसे भी हम देसी लोगों का एक रूल तो पक्का है, शादी हो, फेस्टिवल हो या फैमिली फंक्शन हो, एक अच्छा आउटफिट कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली 3000% बढ़ा ही देता है। तो इस मामले में मुझे लगता है कि हॉलैंड काफी देसी है। स्पीकिंग ऑफ लुकिंग योर बेस्ट, अगर तुम किसी की वेडिंग, एंगेजमेंट या स्पेशल सेलिब्रेशन की शॉपिंग प्लान कर रहे हो, स्पेशली ज्वेलरी से रिलेटेड, तो आरके ज्वेल्स लेकर आए तुम्हारे लिए स्पार्कलिंग ऑफर। एक्सक्विजिट ज्वेलरी कलेक्शन के साथ $250 का अमेजिंग गिफ्ट कार्ड एब्सोल्युटली मुफ्त मुफ्त मुफ्त, यानी कि फ्री मिल रहा है। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस जहां पर मिलता है उसको कहते हैं आरके ज्वेल्स, क्योंकि शाइन सिर्फ डायमंड्स की नहीं होती बल्कि तुम्हारी स्माइल में भी शाइन होनी चाहिए। पहुंचो वहां पर फटाफट से और अभी बने रहो यहीं पर, यानी कि मिर्ची मॉर्निंग्स पर आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स। मीनवाइल यू गो एंड चेक आउट माय सोशल्स, इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

happy birthday to everyone celebrating today. बोले तो 15th of July को. मेरा नाम है Priscilla and this is Mirchi Mornings. और अगर आज तुम्हारा happy वाला birthday है तो remember, तुम सिर्फ एक साल बड़े नहीं हुए हो बल्कि officially और legendary हो गए हो. और पता है आज तुम्हारे साथ अपना special day कौन से celebrities share करते हैं? सबसे पहले है Oscar winning actor Forest Whitaker, talented actress Diane Kruger, कॉमेडियन गैब्रियल इग्लेशियस जिन्हें दुनिया प्यार से फ्लफी भी कहती है, लेजेंडरी सिंगर लिंडा रॉनस्टैट एंड ब्रायन ऑस्टिन ग्रीन, सबका बर्थडे आज ही के दिन है तुम्हारे साथ साथ. हिस्ट्री लवर्स के लिए भी बोनस है, आज के दिन जन्मे थे वर्ल्ड फेमस डच पेंटर रेम्ब्रांट वैन राइन जिनकी पेंटिंग्स आज भी मास्टरपीसेस मानी जाती हैं, और वुमेन्स राइट्स मूवमेंट की एक फियरलेस लीडर एमेलीन पैंकहर्स्ट जिन्होंने हिस्ट्री में एक पावरफुल चैप्टर लिखा है. तो अगर आज तुम्हारा भी हैप्पी वाला बर्थडे है, क्रिएटिविटी टैलेंट लाफ्टर से भरपूर हो तुम और करेज कूट कूट कर भरा हुआ है तुम्हारे अंदर, अब बस केक पर कैंडल्स लगाओ और कैलोरीज को भूल जाओ और विश ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए. मेरी तरफ से भी दुआ है कि आने वाला साल तुम्हें हेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस और बहुत सारी खुशियां दे जाए. और हाँ, मुझे तुम अपने बर्थडे शाउट आउट, बर्थडे इनवाइट्स या फिर बर्थडे केक के पिक्चर्स भेज सकते हो. मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. अभी चलाती हूँ तुम्हारे लिए एक बर्थडे का मिर्ची दार बैंगर. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। अब वो टाइम आ चुका है जब हम पता करें कि गोल्ड एंड सिल्वर क्या कर रहे हैं।
1: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट 4060 डॉलर पर ट्रायउंस के साथ गोल्ड के प्राइसेस पिछले हफ्ते से अबाउट 100 डॉलर पर ट्रायउंस नीचे ट्रेड कर रहे हैं। डेफिनेटली बाय बनती है। राज जोस के साथ 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट पे आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने के लिए आइए राज जोस की स्पेशल फाइनेंसिंग को अवेल करें, जिसमें आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके आप ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं और 9 किश्तों में बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी हिडन फी के आप पैसे दे सकते हैं, ताकि जब गोल्ड का प्राइस बढ़ जाए तो उसका बेनिफिट आपके साथ रहे। और राज ज्वेल्स ऑल्सो गिव्स यू फुल गोल्ड एक्सचेंज वैल्यू फॉर योर ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी। आपके पास अगर पुरानी ज्वेलरी है दुनिया में कहीं से भी खरीदी, राज ज्वेल्स उसके सामने फुल एक्सचेंज वैल्यू देते हैं। तो आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू
0: एंड देयर यू हैव इट, द अपडेटेड रेट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ सुना तुमने मिर्ची मॉर्निंग्स पर। अभी जाकर मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
2: Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

जिसके भी बस की वो आके पकड़ ले, इनसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कम बैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो बैडी बोलती है, गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

0: मुट्ठी में गेम मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा, न मुझे ऐसे मस का लगा। रही ना किसी काम धाम की जब से लड़की को चस्का लगा मेरा।
1: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और ये है मिर्ची आवर का 3, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले साइबर वर्ल्ड 6 सीरियस अपडेट। रिपोर्ट्स के हिसाब से रैंसमवेयर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने इंडिया के कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और अलेजेड फैसिलिटी ब्लूप्रिंट्स डार्क वेब पर पोस्ट किए हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक हुए तो सिक्योरिटी कंसर्न्स को सीरियसली इवैल्यूएट करना जरूरी होगा। नवंबर इंडिया ने पैलेस्टाइन के लिए 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक आर्टिफिशियल लिम्ब फिटिंग सेंटर और एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। पैलेस्टाइन की एम्बेसी ने इस अनाउंसमेंट के लिए इंडिया का पब्लिकली शुक्रिया अदा किया है। एंड फाइनली सोशल मीडिया से एक वायरल स्टेटमेंट में बलूचिस्तान की तरफ से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना क्लेम किया गया है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस क्लेम की अभी तक कोई ऑफिशियल या इंटरनेशनल वेरीफाइड कॉन्फर्मेशन नहीं हुई है और किसी रिकग्नाइज गवर्नमेंट या इंटरनेशनल बॉडी ने इसे फॉर्मली रिकग्नाइज नहीं किया है। This is about Balochistan declaring independence from Pakistan. फिलहाल ये स्टोरी अभी डेवलपिंग सिचुएशन में है। And that's it for मिर्ची आवर का 3. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रसुला तुम्हारे साथ में। सुबह का चाय नाश्ता पानी सब कुछ हो चुका है, तो अब जरा सितारों की सुन ले।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: इरीज यानी कि मेष राशि, आज रियलिटी को फेस करना ही सुपर पावर है। जो बात अवॉइड कर रहे थे उसको आज टैकल करो। लकी कलर फॉर यू इज येलो एंड लकी नंबर इज 9। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, पुराने तरीके कंफर्टेबल हैं, लेकिन अपग्रेड ही ग्रोथ है। आज एक नया अप्रोच ट्राई करो। लकी कलर फॉर यू इज ऑरेंज, लकी नंबर इज 24। जेमिनी यानी मिथुन राशि, न्यू डायरेक्शन से मत डरो यार, आज एक बोल्ड डिसीजन फ्यूचर का फेवरेट मेमोरी बन सकता है। लकी कलर फॉर यू इज मैजेंटा, लकी नंबर इज 5। कैंसर यानी कर्क राशि, दिल के किसी कोने में एक ओल्ड फियर बैठा हुआ है, उसको एविक्शन नोटिस भेजने का परफेक्ट डे है आज। लकी कलर फॉर यू इज डार्क ब्राउन, लकी नंबर इज 18। लियो यानी कि सिंह राशि, आज अपनी आवाज कॉन्फिडेंटली उठाओ, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती है, अर्न भी होती है और कभी कभी रिमाइंड भी करनी पड़ती है। लकी कलर फॉर यू इज सिल्वर, लकी नंबर इज 1। वर्गो यानी कन्या राशि, फैक्ट्स रेडी रखो, अगर डिबेट करनी पड़े तो गूगल मत बनो, गूगल से भी तेज और ज्यादा प्रिपेयर्ड रहो। लकी कलर फॉर यू इज मरून, लकी नंबर इज 14। एंड ये था राशि जोन का पार्ट 1। और ये याद रखो, हॉरोस्कोप डायरेक्शन देता है, डेस्टिनेशन तुम खुद डिसाइड करते हो। राशि जोन का पार्ट 2 लेकर आऊंगी मैं थोड़ी सी देर में, तब तक तुम मिर्चीदार बैंगर सुनो और मुझे फॉलो करो। मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: जय कन्हैया लाल की। प्रणाम मेरे भक्तों, मेरे भक्तों नहीं

0: वेलकम बैक मिर्ची मॉर्निंग्स पर. मेरा नाम है प्रिसला और अब हम कंप्लीट करने वाले हमारा बचा हुआ राशि जोन
1: मिर्ची राशि जोन.
0: लीब्रा यानी कि तुला राशि, चॉइसेस बहुत हैं लेकिन फर्स्ट इंस्टिंक्ट पर ट्रस्ट करो. दिल कभी कभी जीपीएस से बेटर काम करता है. लकी कलर फॉर यू इज ग्रे. लकी नंबर इज 6. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज कंफ्यूजिंग चीजें फाइनली क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी. ओल्ड माइंडसेट को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है. लकी कलर फॉर यू इज ऑरेंज. लकी नंबर इज 21. सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, आज एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज लाइफ का प्लॉट ट्विस्ट बन सकता है, बट क्यूरियोसिटी का वॉल्यूम हाई रखो. लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 32. केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म ही आज का सुपर हीरो केप है. लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज. लकी नंबर इज 11. एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, क्रिएटिव आइडियाज की बारिश होगी आज. बस एक्साइटमेंट में ओवर एक्टिंग मत कर देना, मॉडरेशन भी एक टैलेंट होता है. लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 27. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन राशि, जो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन पेंडिंग है आज उससे फेस करो. कभी कभी पीस का शॉर्टकट ऑनेस्टी से होकर जाता है. लकी कलर फॉर यू इज एक्वा ग्रीन. लकी नंबर इज 3. एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पार्ट 2. मेरे यानी कि प्रिसला के साथ तुम सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स. कीप वाइबिंग विद मी ऑफलाइन एज वेल. सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करो. इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: और बस आज का मिर्ची मॉर्निंग्स भी अपने कुछ बचे हुए गानों की तरफ बढ़ रहा है। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, एंड ऑनेस्टली तुम्हारे साथ ये मॉर्निंग ड्राइव कब खत्म हो जाती है पता नहीं चलता है। लेकिन जाने से पहले तुम्हें कुछ अपडेट देकर जाती हो। अगर तुम क्रिस्टोफर नोलन के बड्डे वाले फैन हो ना मेरी तरह, तो ईयर्स ओपन। उनकी अपकमिंग फिल्म द ओडिसी सिर्फ स्टोरी के लिए ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के लिए भी हेडलाइंस बना रही है। आखिर नोलन की फिल्म है यार, दुनिया भर में सिर्फ 41 थिएटर्स ऐसे हैं जो इस फिल्म को IMAX 1570 फिल्म फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। ये वही अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन फॉर्मेट है जो नोलन पर्सनली प्रेफर करते हैं। और फन फैक्ट ये है कि मूवी शूट करते वक्त ना फिल्म रील लगभग हर 3 मिनट के बाद चेंज करनी पड़ती थी, मतलब कि पेशेंस लेवल इनका 3000 से ऊपर है। तो अगर तुम लकी हो जिनको ये थिएटर मिल जाए और देखने का चांस मिले, तो पॉपकॉर्न बड़ा वाला टब लेकर जाना, क्योंकि इतनी विजुअली स्टनिंग फिल्म में बीच में उठकर पॉपकॉर्न लेने तो नहीं जाना पड़ेगा तुम्हें, राइट? अब जाने की बात हो ही रही है तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तुम आज अपना दिन फुल ऑन स्माइल के साथ जियो, खाओ पियो ऐश करो। प्रिसला की तरफ से टाटा बाय बाय, मिलोगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस पर। ऑफ कोर्स मुझे मिस करोगे तो मुझसे बातें करने के लिए इंस्टा और एक्स पर मुझे फॉलो कर लो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। Stay tuned and stay hot.
1: अरे यू के बड़ा कोरी भाई बजा।

0: Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

0: ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है या आपने भी फील किया है कि सुबह जल्दी उठ जाओ तो ऐसा लगता है कि स्कूल जाने के लिए उठे?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और यार आज भी ना सुबह जल्दी उठना पड़े ना तो वाकई ऐसा लगता है कि स्कूल जाना है, स्पेशली जब फ्लाइट पकड़ने के लिए या फिर अर्ली मॉर्निंग किसी को स्टेशन या एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप के लिए उठा जाए तब। एंड द फीलिंग इज नॉट अ वेरी हैप्पी फीलिंग, हाँ, द फीलिंग इज ऑफ बटरफ्लाइज इन द स्टमक। और भले ही द ट्रैवल माइट बी फॉर फन, लेकिन सब कॉन्शियसली दिमाग में स्कूल जाने वाली फीलिंग आ रही होती है। समझ नहीं आ रहा यार कि ये सुबह सुबह स्कूल जाना ऐसा भी कैसा ट्रॉमा था जो आज भी ये सर चढ़कर बोल रहा है। आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या या आप नॉर्मल हो? डीएम करो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। एंड इसी के साथ मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ और आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एज ए किड जब मैंने DD1 पर सलमान और रेवती की मूवी लव देखी थी तो मुझे सलमान से तो प्यार था ही, रेवती से और हो गया।
0: मिर्ची VCR।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड आई रियली लव्ड हर बबली कैरेक्टर मैगी प्लेड इन द मूवी, और मुझे रेवती की स्माइल से तो प्यार ही हो गया था यार। इस मूवी ने हमें बड़े अमेजिंग अमेजिंग गाने दिए, जैसे
2: साथ

0: इतना करो ना मुझे प्यार।
1: और एक और एक और एक और एक और ये भी सुनो।
0: आजा आजा give me a kiss,
2: na na na na till I am
1: ऑल इन SP बाला सुब्रमण्यम सर की आवाज में। और इस फिल्म में एक और खास बात थी जो मैंने सीखी, हाउ टू कंट्रोल एंगर इश्यूज। एंड बॉस दिस वर्क्स इन रियल लाइफ टू। हाँ, जब भी गुस्सा आए तो काउंट टिल 10 एंड गुस्सा शांत। मैं तो इसे आज भी यूज करती हूँ व्हाइल ड्राइविंग। दैट्स वन प्लेस इन माई लाइफ जहाँ मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आने का चांस रहता है और मेरे अंदर का पृथ्वी निकल कर आ जाता है। सलमान और रेवती ने लेटर ऑन एक ही मूवी में फिर से काम किया था, बट नॉट ऑपोजिट ईच अदर। फिर मिलेंगे में शी प्लेड द रोल ऑफ शिल्पा शेट्टीज डॉक्टर एंड सलमान प्लेड शिल्पा शेट्टीज लव इंटरेस्ट इन द मूवी। और वक्त देखो कैसे निकला कि टू स्टेट्स में रेवती ने आलिया भट्ट की मदर का रोल कर लिया है, लेकिन सलमान खान आज भी लीड के रोल में ही नजर आते हैं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अमजद खान सलमान खान की मूवी लव करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि उन्हें रोल बड़ा छोटा सा लग रहा था, लेकिन देन थोड़ा कैलकुलेशन करके देखा तो उन्हें चीजें सेट लगने लगी।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड अमजद खान, जिन्होंने लव में प्रेम यानी कि सलमान के गुरुजी का रोल प्ले किया था, उन्हें अपना रोल मूवी में छोटा लग रहा था, लेकिन फिर उन्होंने नोटिस किया कि सलमान ने ऑलरेडी साजन जैसी हिट मूवी की है एंड एसपी बाला सुब्रमण्यम इज सिंगिंग सॉन्ग्स इन दिस मूवी, तो उन्हें मूवी सही लगी। लेकिन फिल्म के रिलीज के बाद वो बड़े नाराज थे, फॉर द रीजन कि वैसे ही उनका रोल उन्हें छोटा लग रहा था और मूवी रिलीज होने के बाद उन्हें पता लगा कि उनके काफी सारे सीन्स एडिट कर दिए गए थे। To which he was told by the makers कि movie unnecessarily लंबी हो रही थी, but he didn't feel so क्योंकि उनके according कई सारे ऐसे scenes थे जो उन्हें unnecessary लगे थे film के अंदर, but सिवाय नाराज होने के और कुछ किया भी तो नहीं जा सकता था। इससे मुझे याद आया कि यार मुझे अपनी life में ना काफी time बाद पता लगा कि अमजद खान का नाम actually है क्या, cause मेरा आधा बचपन तो उन्हें गब्बर सिंह के नाम से पुकारने में चला गया था यार, और नहीं तो। You tune in with me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज किसी भी जगह को उस जगह के कल्चर को कवर करने वाले को ट्रैवल ब्लॉगर बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, लेकिन बचपन में इसे हम सुरभि कहा करते थे।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड सुरभि, अ शो जहां इंडिया के वैरायटी ऑफ कल्चर्स और आर्ट के बारे में बातें होती थी, उन्हें कवर किया जाता था, और सबसे मजेदार वाज शो के होस्ट का चिट्ठी पढ़ना। रेणुका शाहने एंड सिद्धार्थ काक वर द होस्ट्स ऑफ द शो व्हिच लास्टेड नियरली अ डेकेड एंड वी गॉट टू वॉच इट ऑन डीडी नेशनल एंड इन फैक्ट लेटर ऑन ये स्टार प्लस पर भी आया करता था। जब मैंने हम आपके हैं कौन देखी थी ना, तो आई रियलाइज कि अरे ये भाभी तो रोज दिन में DD1 पर भी आती है। अरे मैं आपसे इस शो की चिट्ठी वाले पार्ट के बारे में बात कर रही थी ना। सो दिस शो वाज सो फेमस थ्रू आउट इंडिया कि शो पर रेणुका शाहने और सिद्धार्थ काक चिट्ठियों के बोरे उलटते थे और उन चिट्ठियों के ढेर में से कुछ चिट्ठियां निकल कर पढ़ते थे। आज हमसे अपने फोन पर पड़े व्हाट्सएप मैसेजेस भी पूरे नहीं पढ़े जाते हैं यार। 90s का दौर कितना सिंपल हुआ करता था, नहीं क्या? यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: घातक मूवी से ये गाना टू मी इज एन एड्रेनलिन रश का डोज।

ममता कुलकर्णी का परफॉर्मेंस वॉज स्टनिंग इन द सॉन्ग। और इस गाने में उन्हें इसीलिए भी कास्ट किया गया था क्योंकि वो राजकुमार संतोषी, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे, उनकी अगली मूवी चाइना गेट में एज अ फीमेल लीड थी। लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि ये गाना वॉज नॉट जस्ट परफॉर्म्ड बाय ममता कुलकर्णी बट ऑल्सो कोरियोग्राफ्ड बाय हर। घातक का म्यूजिक वॉज कम्पोज बाय वनराज भाटिया, अनु मलिक एंड आर डी बर्मन साहब। लेकिन जब तक मूवी वॉज रिलीज, आर डी बर्मन हैड पास्ड अवे। और उनके जाने के बाद घातक के अलावा 1942 लव स्टोरी वॉज अनदर फिल्म जिसका म्यूजिक तो उन्होंने दिया लेकिन फिल्म की रिलीज तक वो नहीं रहे। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: यार मेजर साहब मूवी में जहां सोना सोना दिल मेरा सोना था, वहीं एक ये म्यूजिक का पीस भी था जो कि ओरिजिनल नहीं है, तभी तो इस कैटेगरी में शामिल है।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड मेजर साहब ने जहां ट्रेनिंग चल रही थी और अमित जी बच्चन जी पूरी टीम को लीड करते हुए आगे जा रहे थे, वहां पर एक म्यूजिकल पीस फिट हुआ हुआ हमने सुना था, जो जोश भरने के लिए अमित जी अपनी टीम को, अपनी फौज को सुना रहे थे और मार्च करते चलते चले जा रहे थे। वो म्यूजिक का पीस कुछ यूं है।
3: हिम्मत कभी न तोड़ेंगे,
4: दुश्मन को ना छोड़ेंगे,
3: घुटने कभी न टेकेंगे,
4: मुड़ के ना हम देखेंगे।
1: अब देखो यार, इतना छोटा सा म्यूजिकल पीस था ये, लेकिन ये भी ओरिजिनल नहीं बना। ये कॉपी किया गया है फ्रॉम अ मार्चिंग सॉन्ग ऑफ द US आर्मी। यार मैं आनंद राज आनंद को यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहूंगी कि एटलीस्ट यहाँ तो अपना ही कोई गाना चला देते ना यार। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कल होना का इंट्रो शॉट तो आपको याद ही होगा, जिसमें कि प्रीति जिंटा न्यूयॉर्क सिटी की सड़कों पर दौड़ती हुई जा रही हैं, अपनी मॉर्निंग जॉग करती हुई जा रही हैं। वेल हियर मी आउट, दैट वाज नॉट एक्चुअली प्रीति जिंटा।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल हुआ ये था कि प्रीति को उस वक्त पैर में लग गई थी चोट, तो वो भाग नहीं सकती थी और ये सीन शूट करना था, तो मेकर्स ने डिसाइड किया कि प्रीति की जगह उनकी बॉडी डबल को दौड़ा देते हैं। और वैसे भी शूट तो बैक का ही था, शक्ल तो दिखानी ही नहीं थी। सो द वुमन रनिंग ऑन द रोड्स ऑफ न्यूयॉर्क सिटी इन द इंट्रो शॉट ऑफ कल होना हो इवेंचुअली वाज नॉट प्रीति एंड समवन एल्स। एंड वेल यहाँ इस फिल्म में प्रीति की जगह भी किसी और को होना था, एंड दैट वॉज करीना कपूर। बट क्या है कि करीना ने इस फिल्म के लिए पैसे कुछ ज्यादा चार्ज करने की कहा था, जिसकी वजह से करण जौहर उन्हें हायर नहीं कर पाया एंड इवेंचुअली प्रीति जिंटा केम इनटू द पिक्चर। और इसी वजह से करीना और करण के बीच में भी काफी डिफरेंसेस आ गए थे, जो कि लेटर ऑन द सॉर्ट हो गए थे। लेकिन ऑन द सेट्स ऑफ कॉफी विद करण, करीना ने ये बात जरूर कही थी कि उन्हें इस बात का मलाल जरूर था कि वो कल होना हो नहीं कर पाए। लेकिन गेस व्हाट, और किसने कल होना हो की? अर्जुन कपूर, एक्टिंग में नहीं डायरेक्शन में। ही वॉज वन ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर्स इन द फिल्म। चलो जी, विद दिस मिडडे मोहब्बत की गाड़ी को आगे खींचते हैं। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Chart Papers,
2: यादों को चिट्ठी.
1: Once upon a time, यूं भी था कि घर पर तुम स्पेयर में यू रखे जाते थे, जैसे आज मेरी गाड़ी की डिक्की में स्पेयर व्हील रखा होता है कि कभी भी जरूरत पड़ी तो काम आएगा. पिंक, व्हाइट, येलो, ब्लू, जाने कितने रंगों में तुम आते थे. और जब मैम चार्ट पेपर पर बनाने के लिए कोई प्रोजेक्ट देती थी ना, तो तुम क्लास को रंगोली बनाते थे. तुम पर काम करना थोड़ा मुश्किल होता था जब तुम्हें अनरोल किया जाता और तुम दौड़ दौड़ कर वापस रोल हो जाते थे. फिर एक एंड पर पेंसिल बॉक्स रखा जाता, दूसरे पर बॉटल, तब जाकर कहीं तुम कंट्रोल में आते थे. मेरी ड्राइंग ना कभी भी अच्छी नहीं थी और मुझे हमेशा लगता था कि तुम बिना मेरे कोई काम किए ही ज्यादा खूबसूरत लगा करते थे. और सबसे ज्यादा तो तुम मैट फिनिश में दिख कर आते थे. मुझे याद है क्लास के टैग बोर्ड के लिए मैम अक्सर सुंदर सुंदर डेकोरेशंस तुम पर बनवाती थी, या जिसका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा बना उसका काम वही लगाती थी. मुझे अच्छे से याद है ये प्राउड मोमेंट मेरी लाइफ में कभी नहीं आया, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, तुम प्लेन ज्यादा खूबसूरत नजर आते थे. जब से स्कूल छूटा तो चार्ट पेपर तुम्हारा साथ भी छूट गया, लेकिन आज भी बड़ा दिल करता है कि तुम्हारे रंग अपने कमरे में भी भर दूं, यूं ही तुम्हें लाकर अपने रूम के एक कोने में तुम्हें घर दूं, क्योंकि तुम आज भी मुझे उतने ही अट्रैक्टिव लगते हो जितना बचपन में लगा करते थे, जब तुम अपने रंग मेरी स्टेशनरी में भरा करते थे. तुम्हारे रंगों की यादों में टिपी टिपी टॉप खेलती तुम्हारी सारा. Stay tuned with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: शंकर महादेवन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना कैसेट के साइड बी का चौथा गाना है।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: पुकार, ये मूवी कब रिलीज हुई थी? ईयर 2000 में। और तब से ये बात कही जा रही है कि

और हम आज तक नहीं समझे कि यार यही तो लाइफ का टंटा है कि लाइफ में चीजें होती रहेंगी, लेकिन फंडा है कि जो भी हो सो हो प्यार का आसरा नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि अगर लाइफ में प्यार है, वो लोग हैं जो हमें हमारी वजह से प्यार करते हैं एंड नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट वी आर, तो जो होगा देखा जाएगा। कॉज इम्पोर्टेंट वो लोग हैं, सिचुएशंस नहीं। और हालांकि इस गाने में प्यार की बात रिलेशनशिप के एंगल से कही गई है, बट आई काउंट लव इन ऑल रिलेशनशिप्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, वेल विशर्स, सब आते हैं इस अम्ब्रेला में। तो मैं तो कहती हूँ कि आज घर जाकर ना आपके प्यार के आसरे को एक जादू की झप्पी देकर एक अनसेड थैंक यू कहिएगा। दे आर अ ब्लेसिंग इन आवर लाइव्स। एंड विद दिस नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। इसी के साथ यही अगला गाना आ रहा, एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

अखियां नू रहण दे, अखियां दे कोल कोल चन परदेसिया बोल पावे ना बोल। मतलब मेरे प्यारे चांद जैसे परदेसी, चाहे तू बात कर या ना कर, लेकिन आंखों को आंखों के पास रहने दे। हाय हाय, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये बहुत ही पॉपुलर पंजाबी फोक सॉन्ग है जिसे बहुत सारे सिंगर्स ने गाया, लेकिन रेशमा जी ने जो गाया था ना, इसे इमेंसली पॉपुलर कर दिया था। इसे कंपोज किया था खान मोहम्मद साहब ने और लिखा था सहराई गुरदासपुरी साहब ने। इसके बहुत सारे वर्जन बने हैं। वो जो कृति सानन की फिल्म आई थी दो पत्ती, उसमें भी इसका एक वर्जन था, और पुरानी फिल्मों में भी इसका एक वर्जन बना है। बॉबी फिल्म का ये गाना सुनते हैं यहाँ पर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन मिर्ची।

0: कर्ज मूवी का जो आइकॉनिक सॉन्ग है ओम शांति ओम, उसमें ना एक बहुत बड़ा गूफअप है। मिर्ची सुन रहे आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब गाने के शुरुआत के 5-6 सेकंड में ही आपको ये गूफअप देखने को मिल जाएगा। जैसे गाना स्टार्ट होता है तो स्टेज दिखाया जाता है जहाँ पे ऋषि कपूर परफॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहे होते हैं। पीछे बैनर पे लिखा होता है डायमंड जुबली सेलिब्रेशन, और फिर अगले शॉट में स्टेज के सामने की ऑडियंस को दिखाते हैं, उनके पीछे जो बैनर लगा हुआ है वो कहता है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। ऑप्शन दिया गया है जो दिल करे आपका मना लो। हो जाती है गलतियां यार, होता है, चलता है, दुनिया है। फिलहाल ब्रेक है पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: तुमने कभी किसी से प्यार किया? किया! कभी किसी को

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची,
2: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
3: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
4: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?

कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।

मिस्टर नटवर लाल फिल्म का ये गाना, और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन थे, रेखा थी और एक वन साइडेड लव स्टोरी थी। जी मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये वन साइडेड लव स्टोरी थी एक टाइग्रेस की, जिसने इस फिल्म में काम भी किया है। आप इस फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स देखेंगे तो उस टाइग्रेस को, जिसका नाम भारती था, उसे प्रॉपर क्रेडिट्स भी दिए गए हैं। तो फिल्म का सब्जेक्ट कुछ ऐसा है कि काफी सीन्स में ये टाइग्रेस सेट्स पे थी। अब जिस वन साइडेड लव स्टोरी की मैं बात कर रही हूँ, वो इस टाइग्रेस को हो गया था जी इश्क हमारे बच्चन साहब से। बच्चन साहब जब सेट पे आते थे, खाना खाते थे, उसके बाद ही अपना खाना खाती थी, वरना खाना नहीं खाती थी। How adorable is that? आपने फिल्म देखी है तो आपको पता है, नहीं देखी आपने फिल्म तो आप जाके देख सकते हैं और ये लव स्टोरी इमेजिन कर सकते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

जाबाज फिल्म का वो गाना तो आपको पता है, बहुत ही रोमांटिक गाना, जब जब तेरी सूरत देखूं प्यार सा दिल में जागे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये एक डुएट सॉन्ग है, लेकिन ज्यादातर इस गाने में सिर्फ फीमेल सिंगर को क्रेडिट दिया गया है, सपना मुखर्जी को। मेल सिंगर का कहीं नाम ही नहीं मुझे मिल रहा था, तो मैंने ढूंढने की कोशिश की, तो पता चला कि इसके सिंगर हैं महेश गढ़वी, जो गुजराती फोक एंड लिटरेचर की बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी लेट मनुभाई गढ़वी जी के भाई रहे हैं, और बॉलीवुड में उन्होंने एक दो फिल्मों में गाया। उसके बाद वो और उनकी वाइफ, जिनका नाम आई थिंक नीतू जी है, ये अब्रॉड में स्टेज शोज, लाइव शोज, ये सब करते रहे हैं। लेकिन थोड़ी हैरत वाली बात है कि उनको क्रेडिट नहीं दिया गया है, जबकि उन्होंने जाबाज फिल्म के एक दो गाने और गाए हैं। एक तो एक जो कवाली है उसमें वो भी उन्होंने गाई है, और जाबाज का जो थीम सॉन्ग है वो भी गाया है। और मुझे ना बहुत टाइम तक लगता था कि इसमें सपना मुखर्जी के साथ मनहर जी की आवाज है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनीवे, ये गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

वाह वाह, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है। मैं जानती हूँ ये कहने के लिए बहुत गलत घड़ी है कि हमारे घर में आज जो बनी थी वो पकौड़ा कड़ी है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। थोड़ा सैड गाना हो गया था, मैंने कहा मूड लाइट कर लेते हैं। पकौड़ा कड़ी गर्मा गर्म साथ में जीरे वाले चावल, सलाद और आलू की सब्जी, वाह वाह, ये था मेरा लंच। अच्छा, गम से खुशी की ओर बढ़ते हैं, उसी के साथ एक शेर भी सुनो। शमीम करहानी नाम के शायर हैं, उनका शेर है, ये खुशी गमे जमाना का शिकार न हो जाए, ये खुशी गमे जमाना का शिकार न हो जाए, न मिलो ज्यादा हमसे कहीं प्यार न हो जाए। लव इश्क प्यार मोहब्बत के साथ अगला गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्च।

उफ क्या ही गाना है ये, थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। गुलजार साहब ने लिखा है, और कई बार ना ऐसा होता है कि पूरा गाना ही बहुत बढ़िया होता है, बहुत सुंदर लिखा होता है, लेकिन कुछ लाइंस ना आपका दिल छू जाती हैं। आप बहुत कनेक्ट करते हो उन लाइंस से, कई बार आपको भी नहीं पता होता कि क्यों आप कनेक्ट कर रहे हो, ऐसी कौन सी याद है जो ताजा हो गई है, ऐसा कौन सा घाव है जो फिर से हरा हो गया है लाइंस को सुन के, या समथिंग अबाउट दोज लाइंस जो आपको बहुत पसंद आ जाती हैं। जैसे इसमें मैं बताऊं आपको कौन सी लाइंस मुझे पसंद है, कहीं किसी रोज यूं भी होता हमारी हालत तुम्हारी होती, जो रात हमने गुजारी मर के वो रात तुमने गुजारी होती। उफ गुलजार साहब, वाह वाह वाह। अच्छा, अगला गाना जो हम सुनने वाले हैं उसकी भी कुछ लाइंस हैं, मजरू साहब की लिखी हुई। तेरे प्यार में बदनाम दूर दूर हो गए, तेरे साथ हम भी सनम मशहूर हो गए, देखो कहाँ ले जाए बेखुदी अपनी। सुन लेते हैं अभिमान फिल्म का ये गाना, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: तेजाब फिल्म के बाद माधुरी दीक्षित ओवरनाइट सेंसेशन बन गई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और उनको इस बात का एहसास कब हुआ कि वो इतनी पॉपुलर हो गई हैं? सुनिए एक बार एक टेलीविजन शो पर उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मुझे पहली बार रिकॉग्निशन मिली स्ट्रीट्स पे, जैसे रास्ते पे चलते। तेजाब जब रिलीज हुई थी तब मैं यहाँ नहीं थी, मेरी बहन के शादी के लिए गई थी यूएस में। वापस आई, एयरपोर्ट पे उतरे हम लोग, बाहर आए तो सडनली एक बच्चा बोला, ए वो थे हीरोइनी हीरोइनी, तो भाग के आए दोनों। मैंने बोला अरे मुझे पहचाना, फिर बोलता है मैडम आप हीरोइन है ना, आप ऑटोग्राफ दीजिए ना। तो मैंने ऑटोग्राफ दिया तो एम से सिग्नेचर किया मैंने, तो दूसरे को बोलता है देख देख मैं मोहिनी मोहिनी।
0: तो तेजाब की मोहिनी का ये आइकॉनिक गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

जय किशन दया भाई पांचाल यानी कि शंकर जय किशन वाले जय किशन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मैं इनका जन्म गुजरात में हुआ था और बचपन से इनको संगीत का शौक था। थोड़े थोड़े बड़े हुए तो हारमोनियम बजाने लग गए। माता पिता ने इनका टैलेंट देखकर इनको संगीत की शिक्षा दिलवानी शुरू की। कई गुरुओं से इन्होंने संगीत सीखा। फिर जब टीनेजर ही थे तब ये बॉम्बे आ गए, वहाँ पर भी इन्होंने संगीत सीखा। वहीं पर ये मिले अपने ढेंटड़ेन जोड़ीदार शंकर से। ये दोनों भाइयों ने मिलके जो म्यूजिक बनाया है वो गाने मतलब एंथम बन गए। जैसे कि ये अगला गाना जिसने पता नहीं कितनी सारी शादियों में दुल्हन की एंट्री करवाई है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: अमोरे मियो तोवे साय तू। ए, क्या गा रहा है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम और गाने गाने पे लिखा है इसे फिल्म में लाने वाले का नाम। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। द क्लासिक सॉन्ग खई के पान बनारस वाला, ये ओरिजिनली देवानंद साहब की फिल्म बनारसी बाबू के लिए लिखा गया था, लेकिन उस फिल्म की पेस से ये मैच नहीं कर रहा था तो ये गाना वहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया। फिर डॉन फिल्म की पेस जो है सेकेंड हाफ में, उसमें एक ब्रीदर, एक कॉमिक रिलीफ सॉन्ग चाहिए था, तब इस गाने को इस फिल्म में इंक्लूड किया गया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

0: जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारों ओनली

0: यूजुअली एक्टर्स से पूछो कि उनका चाइल्डहुड एम्बिशन क्या था, तो वो यही बोलते हैं कि एक्टर बनना था, एक्ट्रेस बनना था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि जीनत अमान जी। वो जब छोटी थी तो क्या बनना चाहती थी, सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: एक लिंग्विस्ट बनना चाहती थी, अलग अलग लैंग्वेजेस सीखकर एक इंटरप्रेटर बनना चाहती थी इन द यूनाइटेड नेशंस। That's really what I wanted to do. I wanted to learn German. Of course, I knew English. Knew a very poor smattering of Hindi. And in school, it was compulsory. Compulsory tha ki hum log French seekhe. So, you know, maine socha ki 5-6 languages seekh lungi aur interpreter ban jaungi.
0: Well, jo unhone socha tha, wo to ye nahi bani. Lekin phir uske baad Miss India Asia Pacific bani, Miss Asia Pacific International bani, phir actress bani, the OG diva of Hindi film industry. क्या ग्लैमरस, क्या हॉट, उफ, ज़ीनत अमान। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

ये तो आपको पता है कि किशोर कुमार जिस शहर में पले बढ़े वो है मध्य प्रदेश का खंडवा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वहाँ उनके कई दोस्त थे, उनका बचपन का एक खास दोस्त था जिनका नाम था बाबू फतेह मोहम्मद, जिनका काम रंगरेजी का था और किशोर दा उनको प्यार से बाबू रंगरेज बुलाते थे। तो ऐसी एक स्टोरी, एक इंसिडेंट है कि 70s में जब किशोर कुमार अपने करियर की पीक पर थे तब बाबू रंगरेज खंडवा से बॉम्बे उन्हें मिलने आए। किशोर कुमार को उनको देखकर लगा कि उनकी फाइनेंशियल हालत शायद थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से किशोर कुमार ने उन्हें कुछ पैसे ऑफर किए अपनी तरफ से, जिन्हें देखकर बाबू रंगरेज ने कहा कि मैं यहाँ इन पैसों से नहीं तुमसे मिलने आया हूँ। और ये सुनकर किशोर दा एकदम भाव विभोर हो गए। ये कहने लगे कि जितना प्यार मुझे खंडवा में मिला है उतना बॉम्बे में नहीं मिला। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची मिर्ची इट्स हॉट पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

सो द अदर डे आई वाज वाचिंग दिस फिल्म आशा, 1957 की जो फिल्म है आशा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वही फिल्म जिसमें इना मीना डी का गाना है, जिसमें लीड्स में किशोर कुमार वैजयंती माला है। उस फिल्म में मैंने ना छोटी सी प्यारी सी आशा पारेख जी को नोटिस किया। आजी उनकी डेब्यू फिल्म तो 1959 में आई थी दिल देके देखो, ये उससे पहले का उनका एक छोटा सा काम था, दो तीन सीन का काम है इस फिल्म में उनका। खैर अभी हम उस फिल्म का गाना सुनेंगे जिसमें पहले नंदा जी को लिया जाने वाला था, लेकिन नंदा जी उस टाइम पे ग्लैमरस रोल्स देख रही थी और ये थोड़ा सिंपल सा रोल था, और समहाउ फिर आशा पारेख जी ने ये रोल किया। फिल्म बहारों के सपने का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: कभी कभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से कुछ अच्छी चीजें भी सीख लेनी चाहिए।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, और एवरी नाउ एंड देन हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं, राइट? वो लाइफ स्टाइल हो, फैशन हो, खाना पीना हो, या फॉर दैट मैटर एनीथिंग एल्स। लेकिन एक चीज जो आपको शायद ध्यान पे नहीं आ रही है इज समथिंग दैट दीज सेलिब्रिटीज दैट वी लुक अप टू आर इन्वेस्टिंग इन। सो अगर अपनी पर्सनल जिंदगी की बात करूं तो मैंने अपने आसपास देखा है अपने ही घर में रिलेटिव्स के साथ कि भाई वो अपने गांव देहात की जो जमीन है उसको बेच बेच के शहर मूव करना चाहते हैं और वहां पे ना अपार्टमेंट कल्चर का हिस्सा बन रहे हैं छोटे छोटे फ्लैट्स खरीद के, एंड दैट हर्ट्स मी लाइक एनीथिंग। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए जो हमारी सेलिब्रिटीज हैं वो लैंड थिंग एल्स। लेकिन एक चीज जो आपको शायद ध्यान पे नहीं आ रही है इज समथिंग दैट दीज सेलिब्रिटीज दैट वी लुक अप टू आर इन्वेस्टिंग इन। सो अगर अपनी पर्सनल जिंदगी की बात करूं तो मैंने अपने आसपास देखा है अपने ही घर में रिलेटिव्स के साथ कि भाई वो अपने गांव देहात की जो जमीन है उसको बेच बेच के शहर मूव करना चाहते हैं और वहां पे ना अपार्टमेंट कल्चर का हिस्सा बन रहे हैं छोटे छोटे फ्लैट्स खरीद के, एंड दैट हर्ट्स मी लाइक एनीथिंग। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए जो हमारी सेलिब्रिटीज हैं वो लैंड हिस्सा बन रहे हैं छोटे छोटे फ्लैट्स खरीद के, एंड दैट हर्ट्स मी लाइक एनीथिंग। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए जो हमारी सेलिब्रिटीज हैं वो लैंड

Mirchi. It's hot. Mirchi. It's hot.

किया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अकड़ी बकड़ी दिक्क दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिका दिकड़ी दिक्क दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकीरो दिकीरो दिकीरो
2: दिकीरो दिकीरो
3: Panja.

0: पार्टी ओवर गो होम।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची, इट्स हॉट।